बाणी नहीं पढ़ी। मैं थोड़ा जहां आपकी रायत मर्यादा ना जोड़ा लख सीधा करके बिठवा को सतनाम श्री धन गुरु गोबिंद सिंह साहब की गोद च बैठे हो गल क्या को सतनाम अपनी आराध्य भले की आखो वाहिगुरु साहब कहने गुरसिख रहत सुनो हे मीत पता लगा की कहते गुरसिख रहत सुनो हे मीत बने मेरे मित्रों गुरसिखो सुनो रब ने मेनू रहत किया पर बाते उठ कर हित चीत चित जोड़ के घर रब विच जोड़ के प्रभात उठ के कर इशनान पढ़े जप जाप गुरु गोबिंद सिंह जी मुकदस कलम कर इशनान पढ़े जप जाप जप जाप जप जी ते जाप साहब अमृतसर इशनान करके गुरु का सिख पढ़े अको सतनाम श्री फिर अगला जीवन दसते कहते वाहे गुरु नित बचन उचारे सिख दी रहत वाहेगुरु नित वाहेगुरु को हिरदे तारे वाहेगुरु को अभी नू बचन कह गए कहते ने वाहेगुरु बिन कह जो खाना है जे रब का नाम नहीं जपया अमृत उठ के नाश्ता कर लिया लंच कर लिया डिनर कर लिया सारा दिन लगा दिता ते रब का नाम नहीं ना जपया को सतनाम श्री एक सत बड़े धार्मिक बंदे समझदा सन उन्हां प्रशादा पका के मेरे अगे रख दिता उन्हां साधुआं अगे रख दिता मैं उदों बच्चा सां ते कहिंदा जदों थाली दे विच प्रशादा बणिया ते उन्हां ने एक बार भी आख्या वाहिगुरु ऐसी गुरबाणी का फैसला है कि खाना खान तो पहलों जे अज तक नहीं करते तो कल तो रोटी खान तो पहलो रोटी देने वाले भी याद कर निशुकरे ना हो शुक्र विच डुबो ये निशुकरे की निशानी है कपड़ा पाया टाई बत्ती शीशे अगे खलोता तैयार होके चले गया वो कहना जे प्रसाद पाठ पटंबर अंडा में जेदी कृपा नाले रेशमी कपड़े ते रोटी खान गए प्रशादा तोड़ के फुरकी ते कोई वाहगुरु ने आख्या जो मुंह लाउन लगे ते उस रोटी विचो रोण की आवाज आई वो साधु दिंदा जो रोटी रोई ते इन्हां मेरे नालदियां ने आख्या क्यों ये आवाज रोण की क्यों आई ते कहिंदे अंदरों आवाज आई रोई मैं नाम आ किसे शुकरे दे मुंह विच पैण लगी शुकरे उत्थे लिखिया ना पापी स्यों तन गड़िया पढ़ते हो सारी बात पापी स्यों तन ते थुक्कां पईयां ते रोटी रोई पापी दे अंदर चले चलियां इत्थों दी लंघूंगी कंध बन के बाहर निकल जूंगी लोकी मेरे ते थुक्कणगे इहदे बाद कुछ नहीं उस इंसान जरा देने वाले भी भुला है जो रोटी रोई तो साधु कहता है उन्होंने डर के पांच बार आख्या वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जो पांच बार डर के वाहेगुरु निकलिया तो उन्हें आख्या वाहेगुरु तेरा शुक्र है रोटी खिड़खड़ा के हसी साधु ने पूछा पहले रोई क्यों से हम हसी क्यों है कहती हूं तेरे मुंह विच पैंदी अपने आप नूं वड्डे भागां वाली समझदी तेरे मुंह विच भजन इन्ना सी हाथ जोड़ के बेनती है कि सतगुरु दा हुक्म है कि रहतवंद गुरु का सिख अमृत वेले उठ के इशनान करके महाराज का नाम जपे भाई लहना जी अज मैं नाम दे उत्ते आप जी नाल भजन कर रहे हां जिहड़े कर रहे हां सतगुरु दी वो वचन आप कल करांगे शहीद जी दे सतगुरु गुरु नानक साहब नूं भाई लहने ने एक दिन अमृत वेले पुछया मैं आप जी नूं फिर बेनती करदा जिहदे कोल अमृत वेला नहीं उहदे कोल कुछ भी नहीं जिहदे कोल अमृत वेला नहीं मैं गुरु दी जोगी च कहिंदा उहदे कोल कुछ भी नहीं अमृत वेला नहीं ते कुछ नहीं
ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਖਾਓਗੇ? ਜੇ ਵੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਵੱਤਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਬੀਜਣ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨੂੰ ਵੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਧਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤੇ ਹਰ ਬੀਜਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਦੇ ਧਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਉਹ ਭਗਤ ਖਾਏ ਖਰਚ ਰਹੇ, ਨਖਟੇ ਮੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਨੌਟੀ ਕਿਤਨਾ ਲੈ ਲਓਗੇ? ਫੈਸਲਾ ਸੁਣੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨੀ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਪਿਆ।

आप सज कभी आवाज मारियो आवाज जरूर मारियो आउंदा दे आउंदा दे आवाज जिन्हें मारी उन्हां दे घर आउंदा दे धन गुरु ग्रंथ साहिब दी गोद विच बैठा कह रहा है तुहाडा चौकीदार आउंदा दे आवाज मारियो फिर एक बार रिपीट करावा आउंदा दे आवाज मारियो मारो अंदर आत्मा तो आवाज आवो सज्जना हाँ देखा तर अपनड़े खड़ी तका तर अपनड़े खड़ी तका

गुरु गोविंद सिंह साहब ने उसका नाम रखता दरगाही माला। की जी? दरगाही तेरे नाम लिखती। वीर जी दरगाही तुहानु देती। तुसी मेरे बापू नु गुरु नानक दी गोद नु मंजे ते पाया ते अज गुरु नानक साहब ने सारी दरगाही तुहाडे नाम लिख दित्ती। तुसी पीर दरगाही मल जे अज तक गुरु के प्यारे हो उस मालिक दे क्योंकि सतगुरु अज तो नितनेम करांगे साडे घर आ गुरु नानक का किरदार इस गल का तुहाडा देणदार आ जे सतगुरु तुहाडे घर कल नूं ना आउण ते आए ही आए नितनेम करो अमृत वेला संभालो बाणी पढ़ो सिमरन करो सरबत का भला मंगो। एक छोटा जिहा बूटा हुंदा फुल्लां दा उहनूं कहिंदे रात दी राणी। की कहिंदे जी? बेनती कहिंदे जी जिहड़े घर च खिड़ी होवे सुगंधी कित्थों तक जांदी सारा महला कोई खुशबू दा भर देंदा ना। ओह गुरु दे सिखो जे एक रात दी राणी कहिंदी खुशबू हो सकदी ते गुरु दे सिख च किन्नी हो खिड़िया ही नहीं कोई करिए की हर बंदे च छेक ने गुरु पंथ दे वास उठो नितनेम करो बाणी पढ़ो अपने घर नूं संभालो। एक बचन गुरबाणी जी सरवर पंखी हेकड़ो तुसीं तां पढ़े लिखे हो सरवर पंखी सरवर मने सरोवर पंखी पंछी हेकड़ो मने एक इस दुनिया दे सरोवर ते एक पंछी गुरु का प्यारा सिख है ध्यान दिओ ते इहदे दुआले जिन्हां बाणी आउंदी उहनां बोलिया जे सरवर पंखी हेकड़ो ते फाई वाल पचास पता लगा तुहानू फाइयां पाउण वाले तुहाडी मर्यादा वधाउण वाले तुहाडे गुरु पंथ दे विच भुलेखे परम पाउण वाले एक नहीं पचास तुरे फिरदे ने। सचेत हो कोई तुहाडे घर दी चोरी नहीं कर सकदा जे तुसी नितनेमी बन जाओ तुहाडे घर कोई सिंध नहीं ला सकदा। मेरी कौम च जे घाटा पिया है अज सब तो वड्डा ते ओह आ नितनेम दा बाणी दा सिमरन दा जिहनू जिहनू पुछ के वे ना भाई जी नितनेम करदे हो हर किसी बचन करके वेखो भाई जी नितनेम कर लो कहिंदे जी करांगे साडे घर दुध पी लो दुध पी लिया 500 रुपया मेरी जेब च पाता। अगले दिन फिर आके पुछया कल तुसी साडे नाल वचन कीता सी वचन पा लिया जे नहीं नितनेम 500 रुपया देना सौखा है चोला देना सौखा है लोई देनी सौखी आ मगर आपा गुरु नूं समर्पित करना बड़ा औखा है। एक बार रख दो मन बेच सेवक एक किसी संत नूं किसी ने कहा जी कोई बचन सुनाओ ध्यान दो जाते जाते बचने एक पले बन लो कोई बचन सुनाओ ते ओ कहिंदा जी साडे कोल ते बचन ही कोई नहीं। संत कहिंदा साडे कोल ते बचन ही कोई नहीं ते जिहनूं उहने कहा बचन कोई नहीं ओह अग्गों हस के कहिंदा फिर पाड़े नहीं होने जे तुहाडे चों किसी नूं समझ लगी ते चीज ओ बोल जमा होंदी जड़ी बोल नहीं जमा नहीं करिए पाली जेडी चीज ते जे तुसा गुरु दे वचन पाले ही नहीं गुरु ने कहा अमृत वेले उठो गुरु ने कहा नितनेम करो गुरु ने कहा बाणी पढ़ो ते जेड़ा नितनेम बाणी पढ़ सिमरन वाला वा जे को ओनू कवे वचन सुना ओनू कुछ ना आउंदा होवे जेड़ा कवे वचन सुना ओनू कवे भाई बाणी पढ़िया कर आप पाली है ना आप वचन पाले है ना ता ही कहो ते उन्हें आख्या संत जी जेड़ा तुसी कहिंदे साडे कोल वचन ही कोई नहीं तो साफिर अपने गुरु दे वचन पाले ही नहीं तां तुहाडे कोल वचन पालो। गुरु ने तुहानू कहा अमृत वेले उठो इशनान करो सिमरन करो गुरु पंथ दी चढ़दी कला दी भाई अरदास करिया करो गुरु नानक दा निर्मल पंथ चढ़दी कला विच जावे। वैसे घबराउण दी कोई जरूरत नहीं इहदी नींह दे थले बाबा अजीत सिंह दा सिर है इहदी नींह दे थले बाबा जोरावर सिंह दा सीस है इहदी नींह दे थले बाबा जोरावर सिंह फतेह सिंह जुझार सिंह दा सिर है। ए अवचल नीम धरी गुरु नानक नित नित चढ़े सवारी जिन्निया मर्जी हनेरियां आ जान इस गुरु नानक पातशाह दे पंथ नूं खतरा ते कोई नहीं ढाउण वाले जिहड़े ने भुलेखे विच आ मगर गुरमुख प्यारिओ जिहड़ी देरी हो रही आ ओह गुरु पंथ दे जिहड़े प्यार करन वाले आ उहनां दे हिरदिआं च टोब पैंदे आ जदों सिखां दे बच्चिआं दे दाड़े कट्टे वेखदे आ जदों सिखां दे घर विच करम वेखदे आ। गुरु नानक पातशाह दे तुसीं सिखो आप जपो प्रचारक बनो एक एक सिख एक एक बीबी घर घर जाके गुरु नानक का होका दियो कि भाई नाम जपो सतगुरु वाले बनो अमृत छको फिर कदी जदों समा मिलिया जी धन गुरु तेग बहादुर साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब गुरु ग्रंथ साहब के चरणा च हाजिर होवांगे तुहाडे जोड़े पैणांगे तुसीं सारे

बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे, कह रवदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे, कह रविदास आस लग जीवो, चिर भयो दर्शन देखे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरमुखो गज के आखो वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु दी बख्शिश दा सदका आप जी सरबत माई पाई, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पातशाह दे दर्शन करने लई आपां अपने घरां तों आए हो, वडभागे हो। सतगुरु ने एक था बाणी दे विच ऐसा दर्ज कीता है, बाह पकड़ जिस मार्ग पावो, ओ जीव सतगुरु गरीब नवाज तेरी पावन चरण शरण विच पनाह विच आउंदा है। जिन्हों तो जीवन दे नरबाह विचों गुजरदिया होया बाहों फड़ के आखे चल गुरुद्वारे चलीए, एवें नहीं। सतगुरु दी पावन गुरबाणी विच यह दर्ज आ कि जिहदी बाह फड़ के सतगुरु गुरुद्वारे लियावे ओ गुरुद्वारे आउंदा है। अज दी इस घड़ी दे विच आप जी अपने आप नूं वडभागे जाणो कि तुहाडे पावन शरीर नूं धन गुरु नानक पातशाह दे दीन दुनिया दे मुबारक हाथ लगे, तुहानूं बाह फड़ के सतगुरु ने अपनी शरण विच लियांदा है। इथों हुण जिहड़ियां घड़ियां सतगुरु दी शरण विच आप जी ने गुजारनियां ने, सतगुरु कृपा करे ये 20 मिनट का समा साडे जीवन दे विच ओ गल समझा जावे जिहड़ी अज दे पावन उपदेश विच गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह दीन दुनिया दे मालक इस महीने राही आपां नूं कहणी चाहुंदे ने, उपदेश देना चाहुंदे ने। हे जीव आत्मा, अषाढ़ दे महीने विच तू की कमाई करनी, अषाढ़ दा महीना किन्ना नूं तपश वाला लगदा है, ते किहड़ियां जीव आत्मा नूं अषाढ़ दा महीना सोहणा लगदा है। ये पावन उपदेश सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने अज दे महीने विच बख्शिश कीता है। एक बार सारे मेरे भैण भरा अपने विछड़े होने दे अहसास विच आण के जो मेरे साहब ने मंगला चरण दे विच बेनती कीती है, 12वां माझ महला 5वां विच सतगुरु गरीब नवाज दे ओ पावन बचन तुसी ते मैं सारे एक बार रल के गाईए। बहुता समा अज नहीं आप जी की सेवा कर सकनी, सतगुरु कृपा करे कल तो पूरा समा जिन्ना बख्शिश होगा आप जी दे जोड़े झाड़िया करूंगा। एक बार रंग विच आण के

0: वणज करो वण जा रहे हो,
1: वणज करो वण जा रहे हो, वणज करो वण जा रहे हो।
0: आवाजा मार रही बापू नानक दी बाणी, उठो अमृत वेले परमेश्वर दी बंदगी करो। फरीदा किड़ी पवंदे ही आवाजा पेंदियां ने, खड़ा ना आप मोहाए, खलोता खलोता किते जीवन दे विच विषय विकारां विच धीआं पुत्तरां विच घर विच रहिंदा, किते ठगिया ना जाई। हां जी,
1: फरीदा दादर वेसी काखड़ी चला दुनिया पत।
0: कल बख्शिश परे बचन आप जी नूं दस्से सन, उस मालक दे दर दी फकीरी बड़ी औखी आ। दर दरवेशी गाखड़ी, ओदे दर दी फकीरी, ओदे दर दी सिखी भी फकीरी है। इक आखो सतनाम श्री, सिखी निभाउणी भी बड़ी औखी जे गुरमुख प्यारे हो। सिख बन जाना बड़ा सौखा वा, मगर सिख होके मर जाना बड़ा औखा है। सिख बनना बड़ा सौखा है, सिख कमाउणा बड़ा सौखा है, मगर सिख होके जिदन जीव आत्मा दी जान निकले ते उदन भी कोई कवे भाई ये सिख सी ते सिख ही मर गया। ये ना किसे कबर ते गया, ना इन्हें कोई धागा लिया, ना इन्हें कोई तवीत लिया, ना ये किसे आशुतोष कोल गया, ना राधा स्वामिया कोल गया, ना निरंकारिया कोल गया। ये जमया भी गुरु नानक दा सिख ते ये मरिया भी, बोलो, गुरु नानक दा सिख। ए बड़ी प्यारी बंदगी आ, बड़ा औखा जीवन दे विच आ। इत्थे नवे नवे साध आण के आपां नूं पटका के लै जांदे आ। बाबा फरीद जी कहिंदे उस मालक दे फकीर बनना बड़ा औखा है, ते फिर फड़ना फकीर निभाउणी बड़ी औखी आ। फरीदा दर दरवेशी गाखड़ी, ओदे दर दी दरवेशी फकीरी बड़ी औखी आ। चलना दुनिया पत, मैं ते दुनिया वां की जीना वां, जिधर नूं दुनिया तुर पई मैं भी उधर नूं तुर पिया। हां जी,
1: बन उठाई पोटली किथे वंजा कत।
0: मैं भी फकीरी दी पांड हुण पोटली मैंने पांड पांड सिर ते रख लिया। इस फकीरी दी पांड नूं मैं किथे सुटां, औखी बड़ी आ फकीरी, ओदे मालक दे नाल निभाउणी बड़ी औखी आ। खन्यो तिखी वालों निकी, एत मार्ग जाना लब लोभ अंकार तज तृष्णा बहुत नाई। बोलना लब छड़ना पैंदा, तृष्णा छड़नी पैंदी आ, अपने बोलां ते कंट्रोल करना पैना है, रब दी रजा विच रहना पैंदा है। इस करके फकीरी औखी आ, इन मैं हुण कितना निभावां। अगले बचन हुण आप जी ने सरवण करने ने, बड़े प्यार भरे बचन ने बाबा फरीद जी दे। एक बार सारे आपो अपने परिवार ते बच्चियां दे भले लई आखो सतनाम, गज के आखो सतनाम श्री। आओ अज वाले जिहड़े बचन बाबा फरीद जी आप जी दे नाल सांझे करन लगे ने, प्यार

एक मिनट लई शांत चित होके प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहे। मार्ग कहिंदे ने रस्ते नूं, सारा संसार रस्ते तो भटक गया, भूले सिख भुल गए सिख। यह नहीं कि संसार ते भुलिया सी। अज मैं एक लेख पढ़ रहा सां, 500 साल तो उत्ते समा हो गया है, धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया के उस दीपक नूं जगत विच जगया जिहदे बारे भाई गुरुदास जी कहिंदे मिट्टी धुंद जग चानण होआ। मगर जे असीं अज सिखां दे घर विच झाती मारीए ते की भाई गुरुदास जी दे उस दीपक दा चानण साडे घरां विच हो गया है? उसे तरह वर्त रखदे आं, उसे तरह श्राद्ध करवाउने आं, उसे तरह पीरां फकीरां दीआं पुछणा पाउंदे आं, उसे तरह पंडतां नूं न्यूयॉर्क फोन करके अपने भविष्य बारे पुछदे आं, उसे तरह इंग्लैंड वाले पीरां नूं पुछदे आं। साडे घरां दे विच्चों ओह अनेरा अजे दूर नहीं होया जिहड़े अनेरे नूं दूर करन लई दीपक वेख के भाई साहब ने कहा सी सतगुरु।

कबीर कोई नहीं तेरा, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, कहत कबीर कोई नहीं तेरा, इथे कोई तेरा नहीं। आखा फिर की करा, कहिंदे हिरदे राम की ना जपे सवेरा, अमृत वेले उठिया कर, परमेश्वर की बंदगी करिया कर। एक वचन होर बड़ा सुंदर गुरु रामदास महाराज पातशाह की कृपा नाल बाबा कबीर जी ने कहा है, रे मन तेरो कोई नहीं, बोलो रे मन इथे तेरा कोई नहीं हो, खिंच ले जिन भार, गड्डे दे अगे पशु जूता हुंदा वा ते गड्डा खिंच रहा हुंदा है। इस तरह ही एक परिवार का मुखी कहिंदा वा, जे मैं हुण पाप ना करा ते इन्हां नूं रोटी कितरा खवाऊं, खिंच ले जिन जिन्हां दा भार खिंची फिरदा है, जिन्हां लई पाप करदा है। ए ते बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार, ए ते संसार ए तरह दा, धीआं पुत तेरे घर च ए तरह रह रहे ने, जे को आलणे विच पंछी बच्चे देंदा है ते लिया लिया के बेचारा कित्थों दाणे चुकदा, अपने मुंह च नहीं पाउंदा। ध्यान दिओ पंछी वाल कदी वेख्यो, जिथों जिथों दाणे चुकदा वा ना, अपने अंदर नहीं लगाउंदा, मुंह दे विच पा पा के दाणे कित्थों कित्थों चुक के लिया के ते बच्चियां दे मुंह विच पाउंदा है। मगर बच्चे जिदन वड्डे हुंदे ने आपो अपने राह नूं उड जांदे, ਕਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਮੁੜਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੜਕੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਚਿੜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਰਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ ਤੈਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟੀਆਂ ਵਾਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ, ਇਹ ਸਾਈ ਬਾਜੋ ਆਪਣੇ ਵੇਦਣ ਕਹੀਏ, ਕਿਸ ਇਹ ਕਿਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जुड़ जाओ वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वचन नु समझो कहिंदे ने गुरु अर्जुन देव महाराज पातशाह कहिंदे मेरा गुर मेरा गुरु पूरा सुख दाता मेरा पूरा गुरु जड़ा है कादा दाता है जी सारे आखो कादा सुखां दा दाता है सर्व सुखां का दाता सतगुर ताकि शरणी पाईए इथे कहिंदे ने मेरा जड़ा पूरा गुरु है सुखां दा दाता है ते अगले वचन वाल मैं आप जी की तवज्जो देवनी चाहना है कहिंदे बंधन काट करे मन निर्मल केड़े बंधन ने जिन्हां नूं कट के ओ गुरु मन नूं निर्मल करदा है पवित्र करदा है गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह दा जदों तुसी ए वचन पढ़दे हो भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया सिमर मना राम नाम चतारे बासरे हिरदे गुरचरण बिहारे ते अगे जाके मेरे सतगुरु कहिंदे काम क्रोध लोभ मोह मन लीना आ जे बंधन काम क्रोध लोभ मोह मन लीना लीना दा इत्थे मतलब लीन हो गया कादे विच काम क्रोध लोभ ते मोह दे विच मन हो गया लीन ऐसा फस गया ऐसा फस गया कहिंदा इत्तों ते बाहर होया ही नहीं जा सकदा मोह ते छड्डिया ही नहीं जा सकदा कोई कहिंदा जी काम बहुत बली है ये छड्डिया ही नहीं जा सकता कोई कहिंदा जी मेरा गुस्सा हटदा ही नहीं कोई कहिंदा लोभ मेरे को छड्डिया ही नहीं जांदा ऐसा लीन हो गया इहदी गुलामी विच फस गया ते मेरे सतगुरु पातशाह जी कहिंदे ने काम क्रोध लोभ मोह मन लीना जदों लीन ही हो गया ते होर कोई चारा ही ना रहा ते फिर गुरु दी शरण विच आण के इन्हें हाथ जोड़ के आख्या एक कोट पंच सिख दारा पंचे मांगे हाला सतगुरु एक ऐसे किले दे विच मैं रह रहा जिहदे विच पंज सिकदार ने काम क्रोध लोभ मोह हंकार ते पंजे ही मेरे को आण के मामला मंगदे ने आखो सतनाम श्री पंचे मांगे हाला जिमी नाही मैं किसी की बोई ऐसा देन दुखाला हे महाराज इना दुखी करदे ने इतना दुखी करदे ने मैं किसी दी जमीन भी नहीं बोई ए पंजे आण के मेरा जो कुछ हुंदा लुट के लै जांदे ने हर के लोगा मौको नीत डसे पटवारी हरी दे लोगो सत्संगियो मेनू एक एक नित नित हर दिहाड़े मन रूपी पटवारी इना पंजां दी फौज लेके आण के सब कुछ लुट के लै जांदा है ते महाराज मेरी कितों पेश नहीं जांदी ते हुण वास्ता पाया सो उपर पुजा कर मैं गुर पै पकारिया पहली गल ते जिनू ए सुध आ जाए जिनू ए चेता आ जाए के गुरु के प्यारे हो मैं लुटिया जा रहा मैं इस गल का पता भी किनू लगा आखो सतनाम श्री फिर एक बार आखो सतनाम श्री वाहेगुरु एक थां ते तीसरे बापू ने वचन किया एकाग्रता बख्शो इस देही अंदर पंच चोर वसे बोलो इस देही अंदर केड़े केड़े जी काम क्रोध लोभ मोह अंकारा ए पंच चोर वसदे ने इस देही विच मगर पता किनू घर दे विच ते कोई चोर आ जाए ते ओदी रबट लखाउण जाने आ जी मेरे घर चोरी होगी चोर आ गया हालांकि की चीज चुकी टीवी चुक लिया $500 दा हो $1000 दा हो ओदी रिपोर्ट ते करवाने आ मगर जिस घर विच 24 घंटे पांच चोर लगे ने कदी एदी रिपोर्ट लखाउण गए हो कदी आख्या जे जाके हर के लोगा मौको नीत दसे पटवारी कदी रोए हो गुरु दे अगे कोई बच्ची दसे कोई भरा दसे कोई गुरमुख प्यारा दसे जितना गुरु नानक पातशाह दी बाणी ने आख्या उपर पुजा कर मैं गुर पै पकारिया मैं बाहवां खड़ लिया उचियां बाहवां उदों खड़ियां करी दियां जदों हार जाइए आखो सतनाम श्री जिता करियो जदों जंग हुंदी आ दोवां पासिआं तों ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇ ਜੰਗ ਦਾ ਅਸੂਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਾਲਾ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਇਹ ਪੰਜ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਬਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਹਾਂ ਵੱਡ
ਦੁੰਦਰ ਤੇ ਮਨ ਮਵਾਸੀ ਰਾਜਾ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਿਥਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਈ। ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ, ਭੁਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਤਰਾ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਾਵਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਪਿਆ, ਹਰ ਕੇ ਲੋਗਾ ਮੌਕੋ ਨੀਤ ਡਸੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਉੱਪਰ ਭੁਜਾ ਕਰ ਮੈਂ ਗੁਰ

ऊच भगवाना तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा सुन मेरे साहिबा डुबदा पत्थर लीजै वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह गुरु प्यारे हो सत्संगियो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह दी असीस दा सदका मेहर दा सदका बख्शिश दा सदका आप जी गुरु द्वारे आए हो इथों गुरबाणी विच इस तरह लिखिया कि जीवन दी सोझी मिलदी सोझी तो वे होना मनुख भटक जांदा है सतगुरु जी कहिंदे गुरु द्वारे होए सोझी पाए सी जिन्ने तुसी मेरे भैण भरा बैठे सचेत हो इस गल नूं दृढ़ता विच अपने फुरनिया विच लियाओ कि गुरु दे कोल जदों आईए जीवन दी सोझी मिलदी आ कि जीवन कितना बतीत करना है जीवन विच आपां की करना है ते की नहीं करना की बोलना है ते की नहीं बोलना अमृत वेले अज विचार चल रहा सी किसे गुरसिख दे नाल कि मूंह तो किहो जे बचन बोलने चाहीदे सतगुरु दा एक बचन है सगल बोलन के माहे विचार बोलो सगल बोलन के माहे जिन्ना बोलो विचार के बोलो की मुंह चो गल कढ़न लगे हो एक बोल ही ते है जिहड़ा जिंदगी भर दियां दुश्मनियां पा दिंदा है एक बोल ही है जिहड़ा जिंदगी भर दियां दुश्मनियां खत्म कर दिंदा है फिर सतगुरु नूं पुछिया गरीब नवाज पातशाह होर बोलन विच दसो कोई इह ते तुसीं दस्या कि जिन्ना बोलना है विचार के बोलना है फिर सतगुरु अगे जाके कहिंदे जेता बोलन तेता ज्ञान जेता बोलन तेता जिन्ना मूंह चो बोल ज्ञान दे वचन बोल दूसरे पासे सतगुरु ने बोलन दे विच बाबा फरीद जी दे वचन आप जी सरवण कर लियो आसा राग विच बाबा फरीद जी कहिंदे बोलीए सच बोलीए धर्म झूठ ना बोलीए जो गुर दसे वाट मरीदा जोलीए जुलीए जोलीए चलीए हर गल सच्ची करिए ते तुसी जिन्ने मेरे भैन भरा गुरसिख माई भाई बच्चियां बैठे हो अपने जीवन विच अपने सतगुरु नूं शीशा बना के अपने सतगुरु नूं रैफरी बना के अपने जीवन दा जज बना के ते आप सामने खलो जो ते वेखो की असी सच बोलदे हां कि असी सच 24 घंटे जबान तो जदों कोई गल करदे हां सच्चियां गल्लां करदे हां किते सानू झूठ बोलण दी आदत नहीं पैगी गुरबाणी दे विच मेरे सतगुरु गरीब नवाज पातशाह ने इतना भी लिखिया कूड़ बोल मुरदार खाए किसे बंदे नूं आपां कहीए क्या कईआं दिनां दा बुस्या मुरदा पिया है मुरदा तेनू खा नक दे उत्ते कपड़ा लिखे आपां गांह नंग जांगे आखांगे इहदे कोलों बदबू आउंदी मगर धन गुरु नानक पातशाह दीन दुनिया दे मालक काजी शरफदीन नूं कहिंदे ने शरफदीन जी तों मूंह दे विचों इक झूठ बोलीए इक मुरदा खाईदा है ध्यान दिओ एकाग्रता बख्शियो किसे गुरसिख नूं पुछदे आ जी अमृत शगला गुरु वाला बन जा उह कहिंदा जी शगलांगे मगर एक गल दा थोड़ा जिहा विचार आ दस पई कृपान नहीं पाई जांदी नहीं जी कृपान पाउणी ते कोई एड्डी औखी नहीं मास नहीं छड्डिया जांदा मास वी छड्ड देंगे जीबा दा स्वाद आ कोई नहीं जी बाबा जी गुरु दे अमृत लई मास छड्ड देंगे शराब नहीं छड्डी जांदी शराब भी छड्ड देंगे केस नहीं रखे जांदे केस भी रख लांगे
ਫਿਰ ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਮਾਸ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਗਜੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਛੁੱਟਦੀ। ਉਹ ਕੀ ਜੀ? ਝੂਠ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜੂ ਜੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਏਡਾ ਇੱਕ ਵਿਅਰਥ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਚ ਗੁਨਾਹ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਝੂਠ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ

कुर्बानी तेरे गुण बहुते मैं एक ना जानिया मैं मूर्ख किश दीजै प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा।

सचेत हो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दी पावन बाणी दे कि जे तेरी गठड़ी दे विच गुण होए जे तेरी गठड़ी दे विच परम पिता परमेश्वर दी बख्शी रहत होई ते परमेश्वर आप तेनू कहूगा आ खालसा मेरो रूप है खालसे मैं हूं करूं आ प्यार नाल आण के दोवे बावां पहाड़ पहाड़ जिहड़ियां भारी भजान के भारी भरोसो वड्डियां बावां वाला बापू आखूगा खालसा मेरो पिंड प्राण खालसा मेरी जान की मगरो तां आखूगा जे तू गुणा दी मालक होएगी ते अवगण वाली नू ते मेरे साहब कहिंदे मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों धन छेजे जाए मेरे साहब कहिंदे ने अवगण यारी कंत न पावे बोलो अवगण यारी सारे बोलो जरा अवगण यारी मन की खोटी खोट कमावे मन की खोटी अवगण यारी उस मालक नू चंगी लगदी नहीं मन दी खोटी खोट कर दिया फिर का सावना जाने मूड़ा अंदरों पिरदा सा उदा सुभाव नू इहने जाणिया ही नहीं कि मेरा पति ते उहनां नाल प्यार करदा जिहड़ियां गुणवंती ने जिहड़ियां गुणां दीआं मालक ने ते आपां इस करके गुरमुख प्यारिओ मेरे सतगुरु दे चरणां विच बेनती करनी आ कि आपां नू सतगुरु गरीब नवाज जी कृपा करो निर्गुण यारे गुण नानके निर्गुण यारे गुण नानके हे मेरे सतगुरु गरीब नवाज मैं निर्गुण यारा वां मेरी झोली दे विच गुणा दी दात पा जेड़े गुणा दा जेड़ी रहत जेड़े नाम सिमरन बंदगी जेड़े जीवन दा सदका मेरा ते तेरा विछड़े दा मलाप हो जाए वोहे

0: आखो सतनाम श्री नाभी चो खिंच के आखो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: कलयुग में एक नाम आधार, बोलो कलयुग में एक, फिर बोलो कलयुग में एक
1: नाम,
0: एक नाम आधार। कलयुग दे विच एक नाम ही आसरा है। धन गुरु अमरदास महाराज का पावन बचन पिया करो, घट घट कर दे साचा नाम मेरा आधारो, आसरा है मेरा सच्चा नाम, सच्चा नाम मेरा बेस है, सच्चा नाम मेरी टेक है, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा, फिर बोलो जिन भुखा, एक बार रोम रोम दे दरवाजे खोल के आखो जिन भुखा, सच्चे नाम दी वडियाई जिन भुखा, सब गवाइया कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इशा सदा कुर्बान कीता गुर विटो, जिस दिया ए

अजे कुंड कढे आपां सारिआं, जब नाची तब घूंघट कैसा। जे हुण गुरु दे सामने आ ही गए हो, रूह नाची उठी आ, ते हुण कुंड कढ के नहीं उतना ही आखो जितना गुरु अमरदास कह रहे होए।

सबना का खसम है। ए सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सो जन पावे, जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सच्चे घर गावे। कहे नानक

0: सारे आखो सारे ही
1: तेरी परिया गोविंद मिलन की तेरी परिया।
0: हुण आपां व्यापार करन आया, एक बचन गुरबाणी दे विच मेरे साहब ने बहुत कीमती, वैसे तो एक एक बचन कीमती, गुरबाणी सारी हीरिया मोतिया जवाहरां नाल मड़ी, गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। एक शब्द बड़ा प्यारा मेरे साहब जी ने प्यारा वचन किया है, कहिंदे तां व्यापारी जानिए, बोलो तां व्यापारी, व्यापारी शब्द बड़ा पछाणिया तुहाडा, तां तुसी व्यापार करन ते सारे ही आए हो, हर बंदा घरों व्यापार करन जांदा है, मगर जेड़ा घाटा खा के चल जाए ना मेरे मित्रो गुरसिखो भाईओ, ते उन्हूं लोकी कहिंदे नहीं इनू व्यापार करना आया ही नहीं, जेड़ा घाटा खा के चल। तां वा गुरमुख प्यारियो के कुछ तां व्यापारी जानिए लाह लै जाओ, लाह व्यापारी ते तां ही किसे कहना लै भी इहदे प्यो ने 10 रुपया दी रास पा के दित्ती सी, इह 10 दे नाल 100 कमा के लाया, बड़ा वड्डा व्यापारी है, मगर आपां नूं ते गुरमुखो मूल दित्ता परमेश्वर ने सुवास, आखिया एक एक सुवास दे नाल परमेश्वर दी बंदगी करके लाह खट के आई, मगर इथो कोई गुरमुख रूहां ते लाह खट के चले गईयां, मगर मेरे वर्गे मनमुख प्यारे जेड़े मनमुख दियां गल्लां मन दियां गल्लां सुनदे रहे, मन पिछे लगे रहे, गुरु दी गल ना सुनी, ए ना सुनिया पीओ पौल खंडे धार होए जन्म सोयला, ते मन दियां गल्लां सुनिया के शराब पीला, जेड़े मन दियां गल्लां सुनदे रहे मेरे साहब कहिंदे चले मूल गवाए मनमुख।

गुरमुख लाह ले गए, गुरमुख लाह ले गए, गुरमुख चले मूल गवाए मनमुख चले।

0: सगल भवन के नायका, सगल भवन के एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी, एक छिन
1: दर्श दिखाए जी, एक छिन दर्श दिखाए जी।
0: हाथ जोड़े तरले पाए, कुटिया विच बैठे कोड़े ने सिख ते प्रशादा सुट के चले गया, मगर एदे तरले ते एदियां बौड़ियां ओ जड़ा विण बोलिया सब कुछ जानदा है ना। एक भाई गुरदास जी ने वचन पढ़िया, आखो सतनाम श्री, कहिंदे जे रब नूं आवाज मारना हाथी ते कीड़ी, ध्यान दिओ हाथी ते कीड़ी। हुण हाथी बड़ा उच्ची कड़ाउंदा है ते कीड़ी बेचारी दी आवाज किन्नी है, ते भाई साहब नूं पुछिया जे हाथी आवाज मारे कीड़ी आवाज मारे ते रब दे घर किहदी पहलों पहुंचदी, ध्यान दिओ किहदी पहलों पहुंचदी। ते भाई गुरदास जी कहिंदे ने कीड़ी दी पहुंचदी, क्योंकि नमाणी होके आवाज मारदी, क्योंकि वह निमाणी होके नताणी होके आवाज मार दी है। इन्हें भी

वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा ऐनी प्यास लग गई हो, ऐनी अंदर तड़प पैदा हुई हो, ऐनी वे तो बिना उदास हो गई है, सिर देण नू तैयार है। आंदी हां सजना नैण हमारे पिरिया रंग रंगारे, मेरिया अखां उहदे रंग विच रतियां गईयां ने, 24 घंटे होर किसे नू नहीं देख दिया, ये 24 घंटे गाउंदियां ने एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी दर्शन दी जय, एक भोरी बाहवा तरला तुसी भी, एक भोरी दर्शन दी जय, एक

सोहेला हो जन्म सोहेला हो ते फिर घर खड़े आने मेनू वखाया अजीबो करीब मंजा रखिया है मंजे दे उत्ते बलविंदर सिंह दी फोटो लाई फोटो दे कोल चौर रखिया है मैं क्या वो कदी आया है कहिंदा आया मेरे घर मैं क्या वो दे सामने वो दी फोटो दे चौर करदा सा कहिंदा जी वो दी सामने वो दी फोटो दे चौर करदा सा आखिर मन विच की छुपिया इन्हां लोकां दे शर्म भी नहीं आउंदी लज्जा भी नहीं आउंदी कि एक बंदा होके मेरी फोटो दे उत्ते कोई चौर करे चलो मगरों कोई अज्ञानी करे चवर तख्त दा मालक ते धरती ते इको या गुरु ग्रंथ साहब महाराज पातशाह जे ते चौर हो सकदा है होर किसे ते चौर नहीं हो सकदा 1978 दे विच जिहड़े 13 सिखां गुरमुख प्यारियां ने शहीदी पाई सी इसे करके पाई सी कि निरंकारी बाबा अपने सिर ते चौर करवाउंदा सी कहिंदे असीं नहीं वेखणा चौर हो सकदा है ते केवल गुरु ग्रंथ साहब दे उत्ते हो सकदा है ते गुरमुख प्यारे हो इहदी फोटो दे उत्ते उन्हें चौर रखे ते चौर करदा है ते मालक दे गुटके उन्हें मंजी दे थले रखे जांदिया दास ने पहलो मारी फोटो भुआ के उहदी चुक के ते फोटो सुट के मैं कहा सजना इस मंजे दे उत्ते ए चादर जिहड़ी नापाक होई है दी फोटो दे नाल इहनू चुक इत्थे पवित्र चादर विछा जे गुरु दा अमृत लैणा ही ते इस मंजे दे उत्ते हुण पोथियां रख जिथे अगे फोटो सी पोथी परमेश्वर का थान ओनू थां दे जिहड़ी पोथी परमेश्वर जोगी इस करके गुरमुख प्यारे बचना है ते अंदरों अपने उस मालक लई कहना है एक छिन अंदर

हे साहब जी ए जड़ी रोज अरदास हुंदी आखो सतनाम श्री हे साहब जड़ी रोज अरदास हुंदी आ खालसे दी भावे अकाल तख्त ते अरदास होवे भावे हजूर साहब अरदास होवे भावे तख्त श्री पटना साहब अरदास होवे भावे केसगढ़ साहब अरदास होवे दुनिया दे हर कोने दे गुरुद्वारे विच हे मेरे सतगुरु सुख मंगी जांदी आ खालसे दी जहां जहां खालसा जी तहां तहां रशिया रियायत रोज अरदास कीती जांदी आ ते मेरे सतगुरु जिन्हां दी रोज अरदास हुंदी आ उन्हां दी कलास दे विच मैनू भी रला ला मैनू भी खालसा बना ला अरदास करो मेरिया भैणा बच्चियां वीर गुरसिख फिर एक एक दा नाम दस के अरदास ना करानी पवे रोज सुते सिद्ध पटीशन हो जाए रोज सुते सिद्ध अरदास गुरु दे घर विच रोज एप्लीकेशन तुहाडी लगे जे तुसी खालसे बन जो ते इस करके परसों ए भागां वाला दिन आउणा है कोई मेरी भैण कोई बच्चा मन दे प्रभाव थले आण के गुरु दा पल्ला ना छड़ दिओ दो तरह दा जीवन हुंदा है गुरु मर्जी ते मन मर्जी गुरु मर्जी ते मन मर्जी ए मन मर्जी होगी जिहड़ा आखोगे अजे साल खलोना है ए गुरु मर्जी होगी कि जिहड़ा कहिंदा हर जपदिआं ढिल ना कीजी मेरी जिंदड़ीए मत जापे साह आवे केहड़ा आवे राम ए गुरु दी मर्जी होगी कि मेरे गुरु दा उपदेश होगा पियो पौ लखंडे तार पियो पौ

बेशुमार अथा अगणत अतुल ज्यों बलाव हो ज्यों बलाव हो त्यों नानक दास बोले ज्यों बलाव हो ज्यों बलाव हो।

से जुड़ के जुड़ के साहब गुरु नानक पातशाह कहणगे सौदा कर लिया परमेश्वर दे नाल उस वाहिगुरु परमेश्वर नूं अपना मन वेच दिता है ते आख्या जी दिता है ते कुछ लईदा भी आ कोई चीज दईए ते उहदे बराबर लईदी मेरे साहब गुरु नानक पातशाह कहिंदे हां सिद्धों मैं लिया है कहिंदे की लिया है कहिंदे मन दिता वा ते खिमा लै ली खिमा निम्रता लै ली उहदे कोलों नीवा पन लै लिया उहदे कोलों निम्रता लै ली झोलियां भर लिया मन दे के अज जदों मैं कई बार पढ़दे आ ना तुसीं भी पढ़दे ते मैं भी पढ़दा सिखां दा रोज पढ़दे हो मन नीवा ते मत उची इतना हो गया जी उल्टी गल चल गई हुण मन हुण उच्चा हो गया ते मत इतना नहीं लगता ध्यान दियो अपने अंदर झाती मार के वेखो मन करके ते असीं कोठे ते चढ़े आ मन करके ते साडे वर्गा है ही कोई नहीं मन दे विच ते जिन्हों भी वेखदे कहिंदे छड्ड इहदे वर्गा मैं इहदे नालों चंगा मन दे विच मन करके आपां रोज कहिंदे अरदास विच कि हे सतगुरु सिखां दा मन नीवा ते मत उची होवे मगर कितना दी ए गल हो गई साडे नाल वापर गई असी मन करके हंकारी बन गए मत करके नीवे हो गए मत इन्नी नीवी हो गई आ भरा नूं भरा वेख के राजी नहीं सिख सिख दा की आ बोलो जी की आ जे गुरु गोबिंद सिंह साडा प्यो आ ते सिख दा सिख की लगदा है इहदे नालों दूसरे भरा ते कदी धोखा दे देणगे दूसरे भरा नूं ते असीं मन्निया है ना कि ए मेरा भरा है मन करके मन्निया ना ए ते गुरु ने मोहर कला के दिता कि एक पिता ते तू मेरा गुर हाई एक प्यो दी औलाद आ जिन्हें जिन्हें बाटे चो अमृत पीता वा कमाल दी गल उहदे प्यो दा नाम गुरु गोबिंद सिंह आ माता साहिब कौर आ उसे प्यो दा पुत उसे मां दा पुत एक दूसरे दा वैरी बनिया कदी रहत मर्यादा पढ़ के वेखो आखो सतनाम श्री वाहिगुरु मैं बाहर ना चले जावा सारे मात्र आप जी नूं कहूंगा जो सिख सिख दी चुगली करे बोलो जो सिख सिख दी सो तनखाइया सो तनखाइये दा मतलब हुंदा है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी च जिस तरह गुरमुख प्यारे चौर कर रहे ने तनखाइये नूं कोई हक नहीं गुरु दी हजूरी च चौर करे ध्यान दियो जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करे जिहड़ा सिख सिख दी चुगली करके काज विगाड़े ओ कड़ा प्रसाद नहीं विगा सकदा प्रचार सकदा ओ तनखाई है जिहड़ा सिख सिख दे दाड़े विच हथ पावे सो तनखाई है जिहड़ा सिख सिख दा मुंह खड़ावे सो तनखाई है मगर आपां अपने शीशे विच किते झात के वेखीए फिर असी सारे ही तनखाइए इतना लगदा वा हे मेरे सतगुरु कदी कहना पऊगा हथ जुड़ के हम बारक मुगद आण हम बारक

बारक बारक मुख मांगे सो देना, बारक मुख मांगे सो। ए बन गया मेरा पुत, ते आज तो हुण जो मेरा पुत मुंह चो मंगे इनू देना है। ओ आर्डर करके मुड़िया, उन्हें कह दिता, गया कोल गल नाल फिर मत्था चुमया, गल नाल लाया ते आख्या मैं कह दिता है दाता देने वाले नू, सचेत होके बैठो, मैं कह दिता है। आके गए ना कि बारक मुख मांगे सो देना, उन्हें आख्या पिता कृपाल आ गया है कीनी, बारक मुख मांगे सो देना। उन्हें ते ए गल कह के मुड़िया, ते पिछे बालक ने आख्या मेरी ते हुण भोखी कोई नहीं रह गई, मैं मंगा की। नानक बारक दर्स प्रभ चाहे, हुण मुक गए ट्रैक्टर मंगने, मुक गईयां गड्डियां मंगणियां, मुक गईयां दुनिया दीयां दौलतां, हुण ते नानक बारक दर्स प्रभ चाहे। बोलो नानक बारक, हुण ते इहनूं पता लग गया असली दात की आ। देख जीवां गुर तेरा दर्शन दे।

अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जोगादि सच खैपी सच नानक खुशी पी सच।

सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगादि सच ही सच नानक खुशी भी सच

गुर प्रसाद जे गुरु की कृपा हो जाए तो गुरु जी की पारस कला विच वरत दी सतगुरु ने जेड़ा अमृत दिता है फिर एदी अलौकिक शक्ति किन्नी कोवे। आरंभ तो मैं कीती सी अमृत दा अखरी अर्थ ऐ मृत जेड़ा मौत तो बचा दे। बड़े लोकां ने मौत तो बचन लई अमृत लभिया पर मेरे सतगुरु ने कहा मौत तो फिर भी आनी है। जिदन सिख नूं अमृत दिता पहली गल कही मैं तेन मरण की जा सिखानी चाहना जिस मौत तो लोग तरिंदे ने तेन मरण की जांच आ जाए तो सदा लई अमर हो जाएगा। यही कारण कि पंजां दे शीस मंगे ते देखो जदों कल भी भाई साहब होरां ने मीर मन्नू का जिक्र किया मैं कहना उन्हां लोकां नूं पढ़ के देखो जिन्हां लोकां ने अमृतधारियां दे जलवे देखे। गल करनी बड़ी सौखी है अज टिचरा करदे ने साडे लोग इस बाणे नूं इहदा कारण इह क्योंकि कमाई आपां वी नहीं करदे। ओनी कमाई होवे किसे दी जरूरत की है कोई अख चोक के देख जाए। नादर ने यही गल जकरीए नूं पुछी सी आप नूं पता है भाई साहब इतिहास दे खोजी ने नादर एक आजड़ी सी आजड़ियां दा पुत्तर भेडां चारन वाला सी जिस दिन इन्हें दिल्ली फतेह की गल इन्हें भी कृपान की कीती ते जिस दिन कलगी वाले ने अमृत दिता गल उन्हें भी खंडे की की। बस किन्ना फर्क है अमृत विच ते एक आम बंदे केवल हंकारी विच। नादर दिल्ली नूं जितया ते मुहम्मद शाह रंगीला हारे। नादर का पुत्र नासर ओदा रिश्ता ओदा विआह ओदा निकाह मुहम्मद शाह रंगीले की लड़की नाल कीता गया। कहिंदे ने जदों नासर महलां विच गया नादर का पुत्र नासर महल विच गया ते उत्थे बैठियां कुड़ियां ने उत्थे बैठियां उस मुहम्मद शाह रंगीले की बच्ची दियां सखियां ने इन्हें ही पुछ लिया सी आ तां गया है तेरा कुर्सी नामा की क्योंकि उन्हें पता सी मेरा बाप आ जड़ी है कुर्सी नामा की दसना सी चुप कर गया। उन्हें फिर पुछया नासर तेरा कुर्सी नामा की है ते वह चुप कर गया ते वापस आ गया मायूस होके ते नादर ने पुछया कहिंदा बेटा कि हे पिसर तू इन्ना मायूस क्यों वे। कहन लगा अब्बा जान महल विच गया उन्होंने मेरा तो मेरा कुर्सी नामा पुछया ते कहिंदे ने नादर कहिंदा तू उत्तर की दिता इस गल वल थोड़ा जिहा तवज्जो दिओ जिहड़ी दात मेरा कलगी वाला दे के गया। कहन लगे बेटा तू की उत्तर दिता है। कहन लगा मैं उत्तर की दिंदा मैं चुप करके आ गया मैनू पता है मेरा बाप आजड़ी सी आजड़ियां दा पुत्तर है। कहिंदे ने नादर ने उस वक्त अपनी म्यान विच्चों अपनी शमशीर नूं कढ़िया ते कहिंदा वापस जा मेरा कुर्सी नामा दस के आई। उत्थे फारसी दे शब्द ने कि मनम नासर ये जाके शब्द उन्हें कहे कहिंदा तेरे तो पुरसिया भी तेरा कुर्सी नामा की है ते बेटा कुर्सी नामा जाके दसी मनम नासर इहदा अर्थ है मैं नासर हाँ पिसरे नादर मैं नादर दा पुत्र हाँ पिसर दा अर्थ है पुत्र मनम नासर पिसरे नादर नादर पिसरे वा शमशीर ते जाके कह नादर आजड़ी दा पुत्र नहीं आ नादर जेड़ा वह अपनी तलवार दे जोर नाल वधिया है ते नादर दा कुर्सी नामा केवल तलवार है। ध्यान दिओ उस हंकारी बंदे ने यह शब्द कह दिते कि जाके कुर्सी नामा दस कि तू नादर है मेरा बाप नादर है ते नादर शमशीर विचों जोर विचों पैदा होया है। मैं कहना जेड़ा शमशीर का मान करता सी जदों पंजाब की धरती तो सिखां ने खौलिया किया उन्हें पूछया कहिंदा जखरीए ये कौन ने जेड़े मेरी शमशीर की मेरी तलवार की ताक सामने ये झुके नहीं। तो मैं एक बेनती करा अज मैं पढ़िया जदों ते मन विच आया संगत विच बेनती करांगा एक बंदा तलवार की जोर नाल अपनी गल मनांदा है वह बंदा हार के पुछदा है कि मेरी शमशीर सामने झुके क्यों नहीं। ते अगो जकरिया उत्तर दिंदा है सच जानी तेरी शमशीर एक धारी है जिस खंडे विचों निकले ने दो तारा है तेरे कोल केवल एक धारी तलवार है ये खंडे विचों निकले ने। उसे जेड़े शब्द कह ज्ञानी ज्ञान सिंह होना ने पंथ प्रकाश विच दर्ज किए ने भाई साहब बड़ी बैठे ने इन्हों याद होने ने शब्द उन्हें पूछया भी सिख कौन ने। कह लगा भी सिख गुरु नानक इन्हों का मुरशद होया है कहिंदा इन्हों खत्म कर दे कहिंदा खत्म हो नहीं सकते। कल नूं मैं अर्ज करनी है तलवार की थां खंडा ही क्यों वरते है क्योंकि आप अगले दिन चलना है। हजूर ने उत्थे उन्हूं पुछदा जदों नादर जकरीए नूं कि कौन ने कहिंदा सिख इन्हां दा मुरशद गुरु कहिंदा ये खत्म क्यों नहीं हुंदे कहिंदा इन्हां दा दसवां पीर
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬੇ ਹਯਾਤ ਦੇ ਗਏ।